0: प्रभु यू
1: यस देवी आई एम द बेबी होम यू वेरी लविंगली कडल्ड एंड ब्रॉट हियर
0: प्रभु बट व्हाई हैव यू इनएक्टेड दिस ड्रामा
1: देवी आई हैव कम हियर टू डू आत्मचिंतन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज I felt this was the right spot. When I came here, I realized this was your place. So, I had to do a little leela to get the place from you. I knew you were very kind-hearted. So, I became a child and you brought me to your home.
2: प्रभु दिस प्लेस अर्थ केदार इज नाउ योर्स वी विल लीव एंड गो टू केदारनाथ द प्लेस बिहाइंड द गंधमंद माउंटेन